420 है। फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किया है रमैया वस्तावैया मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में, लता जी आपको सुनाने वाले थे। लता मंगेशकर जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको मिलकर सुनाएंगे कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का।

हिम्मत वाली आंखों का। तलत महमूद जी आपको प्रोग्राम में सुनाने वाले हैं जिंदगी देने वाले सुन।

जिंदगी देने वाले सुन भी आप सुन रहे थे, तलत महमूद आपको सुनाने वाले थे। मधुमती है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में पेश करते हैं टूटे हुए ख्वाबों ने।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। तलत महमूद जी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं। सुनने वालों, जाए तो जाए कहाँ,

0: Al 32 keer de beste mobiele provider.
1: अभी आप सुन रहे थे जाए तो जाए कहाँ, तलत महमूद जी आपको सुनाने वाले थे। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी बहारे फिर भी आएगी से भी आप सुन रहे थे, महेंद्र कपूर जी आपको सुना रहे थे। कोई होता जिसको हम अपना कहते यारो,

होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में फ्रॉम द मूवी मेरे अपने। लता जी आपको सुनाने वाले हैं दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या।

में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला, ये पूछेगा कि अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में। कल आज और कल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं भौरे की गुंजन।

अभी आप सुन रहे थे भौरी की गुंजन है मेरा दिल, साथ ही है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है।

माइती मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किए हैं। जवानी दीवानी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोर डा की आवाज़ में सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल।

किशोर आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जवानी दीवानी। चलादा यानी गीत का बोल है चला जाता हूँ, किशोर आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मेरे जीवन साथी।

चला जाता हूँ किसी के धुन में। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरे जीवन साथी से हमने पेश किए हैं काटा लगा। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी समाधि से।

बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सरासा हम देखे तो प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं।

You are in love, he is and she is also in love. प्यार से ये सृष्टि रचाई गई है मेरे प्यारे सुनने वालों, तो हम और आपसे क्या कहे। लता और किशोर दा जी की आवाज में यहाँ से आपने और मैं भी सुने हैं। आपको ये बताना चाहती हूँ और वो क्या है जरा हम यहाँ से आपके बता दें। झूठे प्यार को पहचाने, झूठे प्यार को पहचाने, सच्चा प्यार भी होता है। पर कहीं यहां से हम आपको इतला करते हैं कि झूठे प्यार को भी आप जरूर से पहचाने। तो पहला ये है जो आपको सबसे बात में याद करे, जो आपको सबसे बात में याद करे, वो सच्चा प्यार नहीं कर सकते। जो प्रियोरिटी आपको नहीं देते, इसके मतलब है वो सच्चा प्यार आपसे नहीं करते। जहाँ पर एक दूसरे को समय ना दिया जाए, एक दूसरे को समय ना दिया जाए, वहाँ सच्चा प्यार नहीं हो सकते। और जो आपको गलत काम के लिए जोर दे, जो आपको गलत काम करने के लिए जोर दे, वो सच्चा प्यार नहीं हो सकते। और एक ये भी है, जो अपने परिवार को छोड़कर आपके पास आए हैं, वो आपको छोड़कर भी जा सकते हैं, ये भी सच्चा प्यार नहीं है। के जीवन में ऐसे ऐसे

ये सुंदर सा गीत आपके लिए, ये सुंदर सा गीत आपके लिए चला दिया गया है। गीत का बोल आई एम इन लव, सोनू निगम, महालक्ष्मी आयर।

प्यार ना ही सिर्फ अपने पति या पत्नी से किया जाता है, बच्चों से भी, परिवार से भी, माँ बाप से भी, पड़ोसी से भी, भाई बहन से भी। एक बार कभी मैंने कहा था कि अगर ये सब नहीं रहेगा, भाई बहन, बच्चे, माँ बाप, तो इनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई कोई भी नहीं। लोग कहेगा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, पर माँ नहीं, मैं तुम्हारे पिता जैसी हूँ। जैसी ये शब्द, माँ माँ होती है, पिता पिता होता, अपना बच्चा अपना बच्चा होता है, पति पत्नी अपने होते हैं। आप दूसरा स्त्री के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, दूसरा पुरुष के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, पर वो जो आपके साथ रह चुके हैं, जिसके साथ आपके गांठ बंधन हुए हैं, वो सिर्फ एक बार ही होता है। इस बात पर ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के साथ बैठो, अपने माँ बाप के साथ बैठो, उनसे बात करो, एक दिन वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। उन्हें आज़ाद छोड़ दो, अपने माँ बाप को आज़ाद छोड़ दो, खर्च करने दो, अपनी मर्जी से जीने दो, एक दिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ जाएंगे। उन्हें बार बार ना टोको, जब वो खामोश हो जाएंगे तुम उनकी आवाज सुनने को तरस जाओगे। जितना हो सके, जितना आपसे हो सके उनका आशीर्वाद लो, जितना आपसे हो सके अपने माता पिता का, अपने बुजुर्ग का आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, और जीते जी अपने गलती के लिए उनसे माफी मांगो। जब वो चले जाएंगे फिर तुम्हारे माफी मांगने का कोई कोई कोई फायदा नहीं होगा। उनके पास बैठो, उनके साथ खाना खाओ, एक दिन ऐसा भी आएगा वो चले जाएंगे और तुम थाली में भोजन लेकर जब बैठोगे तो आप उनको याद करके रो लोगे, तो आप उनको याद करके रोने लगेंगे।

किशोरदास से, किशोरदास जी से हमने सुने कि मैं आशिक हूँ बहारों का टाइटल सॉन्ग आपके लिए चला दिया गया है। फाहम रेडियो से आप और मैं जुड़े हैं।

इश्क हुआ आजा नचले फिल्म का नाम। सोनू निगम और श्रिया घोषाल जी की आवाज में इश्क हुआ। शब्द शब्द यानी कि बोली बोली जो आप और हम सुनते हैं ना, शब्द से खुशी मिलते हैं, शब्द से गम मिलते हैं, शब्द से पीड़ा भी मिलते हैं। ऐसे कोई कड़वा शब्द आपको कह दे तो आप जरूर घायल हो सकते हैं। और शब्द ही मरहम है, शब्द ही मरहम है। आपसे कोई दो मीठे बोल दे तो आप जरूर से जो गम है वो भूल सकते हैं। पर जो गम आपको है वो कितने गहरा है ये मुझे पता नहीं, फिर भी शब्द ही मरहम होता है।

0: ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत है।

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता,
1: तबर्रुक मिलता है। मेरी इबादत तुम्हारी इबादत,
0: तुम्हारी मोहब्बत।

0: ताज।
1: हुमायूं का मकबरा।
0: हमारी मोहब्बत जितनी
2: राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी आयर जी के आवास में आपने सुने बोलना हल्के हल्के। सुनी हुई बातों पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जी हाँ ऐ मेरे दोस्त, कि सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहाँ वह स्वयं गलत था।

खुद के बारे में, खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंख बंद करके, कुछ देर आंख बंद कर अपने ज़मीर से ज़रूर से पूछे।

जरा, सुन ले जरा, आई एम इन लव एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो इन लव। के एंड दो मनिक जी की आवाज में हमने सुने

प्रेम में पुरुष कभी पुरुष हुआ ही नहीं। प्रेम में पुरुष कभी पुरुष हुआ ही नहीं। वो स्त्री के छाती से चिपक कर एक छोटा बच्चा बन जाता है। और प्रेम में बड़ी स्त्री माँ के समान हो जाती है। आप सुन रहे हैं फावन हिंदुस्तानी रेडियो।

स्वागत है स्वागत है आपको। आज से बेहतर कुछ भी नहीं क्योंकि कल कभी आता नहीं। आज से बेहतर कुछ भी नहीं क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा।

जी हाँ, देखो प्यार मोहब्बत फिल्म का नाम है और मन्ना दे रफ़ी साहब ने सुना दी ये सुंदर सा गीत। हाँ सुनने वालों

जख्म फिल्म का नाम लता की आवाज में हम सुन ले बेताब दिल। दतैतिस उन बतालबार मात मार हैत इस मार हैत इस एन कोस्ट यू नीड्स। यू कैन मेट द टाइट ऑलस डून व्हाट यू विल मार यू कैनट हैट नीड बसेटन। यू कैनट हैट बस्टेडन मार यू कैनट हैट नीड हाउडन। एन आश यू हैट क्वाइट बेन इज एर गीन वेग मेर टेरुग। हैट इज गवोन वेग। Gebruik het verstandig, maar maak er beste van ieder minuut van de dag.

फिल्म के नाम गति पतंग और किशोर दास से हमने सुने वालों, और कहते हैं कुछ खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाए, कुछ खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करता है, कसम से उन्हें याद करके हम मन ही मन कितना मुस्कुराया करते हैं। दुख की कैसी भी छाया हो, दुख की कैसी भी छाया हो जीवन में, वो लम्हे जीने की वजह बन जाया करते हैं। कहने के तो सुख दुख आते जाते रहते हैं, कहने को तो सुख दुख आते जाते रहते हैं, दिल में जो रहे, दिल में रहे वो अमानत बन जाया करते हैं।

खुदा गवाह फिल्म का नाम सुनने वालों, उदित नारायण और श्रिया घोषाल इस बार हमको सुना दे कि बहुत प्यार आया है तुम पे। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरी जीवन कम पर जाएगा। इस बार हम आपके लिए चुन कर रखी हूँ जगजीत सिंह जी की आवाज़ में। अगर तुम कहे और वो मुस्कुरा दे,

कितने सुंदर से फरमाए जगजीत सिंह, साथ में चित्रा सिंह जी कि चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। कितने अच्छे बयान हैं, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों को पसंद तो पल भर में बदल जाते हैं। एक बार फिर जगजीत सिंह के आवाज़ में क्लोज टू माई हार्ट, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम।

क्लोज टू माई हार्ट, जगजीत सिंह जी की आवाज़ में वही मशहूर गीत कि याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, सोचती हूँ आपके लिए एक और जगजीत सिंह का गीत यहाँ पर से आपके लिए सेलेक्ट कर देती हूँ। पर उससे पहले ये ज़रूर कहूँगी कि मदद करने की बात मदद की उम्मीद करना एक सौदा हो जाता है, और दूसरों के घरों में झांकने वाले अक्सर खुद के घरों की नींद तक नहीं संभाल पाते हैं। एक बार फिर जगजीत सिंह आपको देखकर देखता रह गया।

जी हाँ, जगजीत सिंह की आवाज़ में अच्छा लगा ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगे। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। जिस व्यक्ति में लालच नहीं, जिस व्यक्ति में लालच नहीं, उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता। जिस व्यक्ति में लालच नहीं, उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता। इस पर हम आपके लिए चुन कर रखी हूँ ज़माने की सारी खुशियाँ मिल गई है, श्रेया घोषाल और उदित नारायण जी की आवाज़ में।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल। रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुनने वालों। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब, खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। दूसरों में बुराई बताने में हर शख्स माहिर होता है।

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से एक रिश्ता है और सदा होगी हमसे और तुमसे आज भी प्यारे बातें जैसे रोज हुआ है, आज भी होगे कुछ प्यारे प्यारे बातें, कुछ प्यारे प्यारे गाने, कुछ प्यारे प्यारे भजन होगी। सुबह का प्रोग्राम है हमारे सुनने वालों, आप सब चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे। चलो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, हर एक घर में जहाँ पे दुख है और मातम है उसे भगवान सहन शक्ति दे सहने के लिए, और सदा हम सुख में हर एक इंसान के साथ शामिल है, दुख में शामिल है पूरा टीम फोन हिंदुस्तानी रेडियो, हम आपके दुख में शामिल है। हर एक को एक शुभ सुबह हो, शुभ दिन हो। जैसे आप जानते हैं ना दोस्तों, सुबह का प्रोग्राम हम चलाएंगे कुछ भजन और हम कुछ ऐसे ऐसे गाने सुनाएंगे। आज 12 बजे तक हमारा पुत्र हमारा साथ रहेगा और हम आपके चलाएंगे आप कुछ ऐसे ऐसे गाने कुछ भजन के रूप में है, और देखा जाए तो कुछ भजन मैंने चुन के रखा है आपके लिए। और तुम्हें मेरी माता है, तुम्हें पिता है, सुबह है, कुछ ऐसे ऐसे गाने हम आप आज आप लोग के सुनाने वाले हैं। हम सब आप मिलकर सुनेंगे, एक घंटे का हिस्सा प्रोग्राम रहेगा, कुछ भजन है, उसके बाद हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आप लोग के सेवा करेंगे। अब तब तक के लिए चलो हम चलाते हैं तुम्हें मेरी माता तुम्हें पिता हो, और एक बार सबको शुभ सुबह हो, शुभ दिन हो।

जी दोस्तों, तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता। अभी आप सुन रहे थे क्या वचन है, शुभा का प्रोग्राम है। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो आपके साथ 12 बजे तक हम रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे गाने हैं जो हम आप लोग का आज सुनाने वाला है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तू प्यार का सागर है, शुभा का प्रोग्राम है और अच्छे अच्छे गाने हैं। दोस्तों, मिल के सुनते हैं।

हर एक को ऐसा ही रास्ता दिखाइए भगवान, जैसे कहते ही कानों में एक जरा कह दे, हर एक को एक ऐसा रास्ता दिखाइए, और इस दुनिया में जितना दुख हो रहा है भगवान आप ही जो इसे अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आगे चलते ही फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर हम सब चुन है हमारे प्यारे सुनने वालों, और कुछ ऐसे ऐसे गाने मैंने चुन के रखा है और मिल के हम सुनेंगे। आज हम भी कुछ गाने सुनेंगे आपके साथ। जैसे मैंने कहा, हर दिल से एक रिश्ता बन चुका है, हर रोज की तरह हम भी हमेशा की तरह हमसे तुमसे होगी रेडियो फाहून पे इन बातें।

तू शाश मेरा शाशा नाम तेरा। अभी सुन रहे थे भजन के हमारे सुनने वालों, हम एक ऐसा भजन चलाते हैं हर मेरा प्रोग्राम में भजन के, हम हरिओम शरण के एक भजन चलाते ही ऐसा प्यार बहादुर मैया। आज भी मैं वो भजन को चलाऊंगा क्योंकि हम

ऐसी बात है, ऐसा प्यार बहा दे मैया, क्या अच्छे में शून्य में क्या बहुत अच्छा लगा के मैं बालक तू मैया मेरी। सच में बात ऐसे है, भगवान को बोलना नहीं चाहिए, वही है माता वही है पिता। जैसे अभी मैंने एक भजन को सुनाया था, तू ही माता तू ही पिता हो। सच में बात ऐसे है, ऊपर वाला के दया से हम लोग चलते हैं, नीचे हर एक चीज वही के दया से होते हैं और वही के दया से आगे भी होगी। चलो हम आप लोग के और एक गाने सुनाते हैं, अब कुछ प्रोग्राम बाकी है कुछ भजने के।

तुम आशा विश्वास हमारे, हम सब अभी सुने हैं। विश्वास में एक ऐसा दम है, ऐसा बात है कि विश्वास जिंदगी संवार देते ही, जिंदगी बना देते ही, लेकिन विश्वास करना चाहिए। विश्वास एक बहुत कठिन बात है और वही संवारते हैं, वही बनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, शिव शंकर रखवाला। जैसे हर एक घर में एक रखवाला है, रहता है, और ऐसे हम लोग के ऊपर भी एक रखवाला है, उसे बस याद करना चाहिए। हर एक दिन में 24 घंटा है दिन रात में, अगर हम 5 मिनट निकाल देते हैं ऊपर वाले को याद करने के लिए, वही बात है, उतना में भगवान खुश हो जाता है ना ऊपर वाला, ठीक है 5 मिनट मेरा मुझे याद किया है। ऐसे है हमारे प्यारे सुनने वालों, बात ऐसे है। अगर बात ऐसे नहीं थे तो ये बात मैं नहीं कहते, बात ऐसे ही 5 मिनट 1 मिनट निकाल लेते ही शिवा के याद करने में बस उतने ही काफ़ी है। चलो दोस्तों, हम सुनाते हैं आप लोग के आगे प्रोग्राम, आगे देखते ही और कौन कौन रखवाला है।

सत्यं शिवम सुंदरम, क्या भजन क्या भजन क्या भजन शुभा है। और ऐसा भजन सुनने के मिलते ही जी खुश हो जाते हैं। हरिओम शरण को एक बार फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा आपके लिए। डम डम डमरू शिवा के एक भजन है।

जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे ओम नमः शिवाय। आप जानते ही मैं हूँ अनिल सारजू, जो आपके खिदमत में हूँ दोस्तों। चलो आगे चलते ही, ऐ मालिक तेरे बंदे हम।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे ए मालिक तेरे बंदे हम। चलो हम ले चलते ही मुकेश का एक भजन, जोत से जोत जगाते चले।

जहाँ दोस्तों दो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम का गंगा बहाते चलो। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का भजन का प्रोग्राम और ख़त्म हो चुका है भजन प्रोग्राम है दोस्तों। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सरजू और अभी आप सुने थे हमारा प्रोग्राम थे एक घंटा का भजन प्रोग्राम जो हमने सुनाया है और आप लोग सुना है। ठीक है दोस्तों, भजन प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और यहाँ से हम जरूर कहते हैं फिर मिलेंगे भजन प्रोग्राम लेके आएंगे फिर। ठीक है दोस्तों, अभी हम प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। ये था भजन का प्रोग्राम। ओके

तौबा मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तर सस्तका, जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का, जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रोग्राम को अगले गानों को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मारो दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा, जीना तमन सीना तमन में काम क्या है देव अनंत जीना तमन और आशा भोसले की आवाज़ से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एफर ग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हाँ दोस्तों, दम मारुदम अभी आप सुने थे, दम मारुदम, और हम आपको ले जाते ही इस वक्त रंबा हो शंबा हो चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान, और हम मिल के इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जी हाँ, रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पपिलहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पपिलहरी का ये डांस नंबर है याद आ रहा है, पपिलहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पपिलहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जी दोस्तों, पप्पी लहरी की आवाज मूवी डिस्को डांसर, इसमें काम किया है मिथुन चक्रवर्ती, याद आ रहा है। चलो हम ले चलते हैं दिलर मेहंदी की तरफ, और देखा जाए तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले चले, बल्ले बल्ले सब सुनते हैं। सुखवार है, वीकेंड आ गए हैं, रेड पुश हो या ब्लैक पुश हो उसके तफरा पर रखिए, एक बॉल मारिए, डोसा पकाइए, खाइए और कुछ नाच गाना भी कीजिए, क्योंकि वीकेंड थे दोस्तों। चलो मिलके सुनते हैं दिलर मेहंदी की।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तू बल्ले बल्ले दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुने थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोग सुनाते हैं। देखा जाए तो बोलो तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना हम आपके सुनाते हैं। बोलो तारा रा रा रा क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें। देखा जाए इसमें तो है कुछ और हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा से कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

जी हाँ दोस्तों, जाने जा ओ मेरी जाने जा एस दे बिरमन। जी हाँ दोस्तों, चलो हम घर की तरफ देखते ही तो क्वार्ट फोर फिर है, इसका मतलब है हम दो गाने और चलाएंगे, उसके बाद न्यूज़ बयाम चलेंगे और हमारा कोलेखा, मैं नहीं जानता हूँ कौन सा कोलेखा, लेकिन एक ऐसा कोलेखा फिर से ले लेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, पढ़ते हैं आगे और बोलो। तारा रा रा दिलर मेहंदी पंजाबी गाना है दोस्तों।

अरे बोलो तारा रा रा रा, दिलर मेहंदी को भी आप सूर्य थे, चलो हम चलते हैं, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो क्या बन जाए।

जय दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु हो और खुदा हाफिज हो। हर एक जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं दिन साख के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम बहुत विदाई लेंगे। दिन साख के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कुलेखा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज़ हो।

जान दोस्तों बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला जी ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी हाँ दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विंस का फिल्म में मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे। एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार मालासिदा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, 1962 का है। जे ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहते तो इस शस्त का है

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहा सिंह ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी हम आप लोग के लिए चलते नेहा सिंह वेफन शस्तक में। जौहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नेहा सिंह फैफन शस्तक में, आँखियों का नूर है तू।

जी दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, सुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। नेगेटिव 5 और 6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं नेगेटिव 5 और 6 तक में जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एन महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर महमूद इन गोवा निकले फैंस तक में। और देखा जाए तो एक जोन गाना अब हम रखें, बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाए से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मन की सुनत, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। जोहर महमूद इन गोवा लेकिन तीन फैंस का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार। सबको राम राम नमस्कार।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज़ पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज़ है किस राह में किस मोर पर, लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी, आनंद जी। हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ, नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ सुनाओ।
1: अरे अरे अभी नहीं, क्या तुम भूल गए हो? तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मूवी मेरे हम सफ़र, किसी राह पर किसी मोर पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए। मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना, अल्बम मूवी हीरा तमन्ना है, और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाई दीक्षा आनंद बख्शी की, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

जा दोस्तों, मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है। ब्याह सुन रहे थे दोस्तों आनंद बख्शी का लिरिक्स, और आप जानते ही राहुल देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम। आप ही तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं, और आप सब चुन है द एफ अगेन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल जारजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं। मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो प्यार से गाया है। जिस गली में तेरा घर ना हो बाल माँ, मूवी कति पतंग तक का है। और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदे बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुनते रहना, ये गीत भी आप लोग के नाम है, मूवी कति पतंग के, जिसमें जितेंद्र आशा परीख ने काम किया है।

0: बालमा।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग। मेरी कंतिन एनन सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने भी गीत को सुना है, और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले सांस को लगा चुके हैं अगले गाने को, और देखा जाए देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण, दो कल्याण मेरी कंतिन आतन शस्त्र का है यार। और वो देखा जाए तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग, लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्मा श्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंतीन एनन तख्त का। न जाने क्या हुआ जो तुम छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मोहल्ले की लता मंगेशकर का आवाज़ है और सब कोई सुनो कोई जा मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया मूवी दर्द नहीं खनते इन तख्त का जिसमें हेमा मालिनी रजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर नहीं खनते टू इंसेस्ट का जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और द क्वीन लता मंगेशकर म्यूजिक शंकर जयकिशन और लायरी से साई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर 1962 का। चलो आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज़ है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लायरी से कफीन आज़ाद मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, अ स्माइल ऑन माई लिप्स एंड टीयर्स इन माई आईज। इन अदर वर्ड्स, आई फील अलाइव व्हेन आई हियर दिस।

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊँ, मैं तुझ में समा जाऊँ। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बलाइस्त्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। जहाँ पर भी हो जिस हाल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो लव्स यू ऑल। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं थिल फील लश्तर प्लेजीर के साथ जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक ऑर्गामन हो, ऑर्गावुमन हो, इवेंट ऑर्गेनाइजेटर तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। Noch geen lid van Fahun Hindustani Radio, तो बिनती निवेदन गुजारिश किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और वो को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 0 3 5 6 8 9 पर, या तो आप तार करें अपने 0 7 3 5 6 2 2 7 4 पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और वो को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से तह दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम भी है, तो जरूर हम लोग के बारे में बातें शाते तो करते रहना यारो।

In a gemeke terfaar, Sebiko, super hit songs from the Bollywood film industry. और लाते हैं प्रोग्राम में इस जमाने के महान गाने वाले द ग्रेट पवनदीप राजन और ब्यूटीफुल वाइफ अरुणिता कांजिलाल के साथ मिलकर यति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश करने वाले हैं। लोफ नहीं तो क्या है, कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स सलीम सुलेमान।

अगला बयान एक और महान गायक हमारे इस जमाने का महान गायक नौजवान कलाकार सलमान अली जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे इश्क दारोग, ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय रजनीश सिंह सेतु, म्यूजिक दिया है भी रजनीश सिंह सेतु ने।

अति ही सुंदर बयान इश्कदार होगा आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया न्यू सॉन्ग 2023 सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। एक से एक अति सुंदर सुंदर से नगमे सेलेक्ट किए हैं और ये जो आप सुना इस जमाने का महान गायक द ग्रेट सलमान अली के मधुर आवाज में कंपोज बाय रजनी सिंह सीतू। मेरे ख्याल से भाई यूसुफ जी का परिवार यह होगा। भाई यूसुफ भी इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हो गया है महान अनाउंसर साथी मैस्ट्रो चंद्रसेन गंगा जी के साथ। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा नगमा है और वो सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को महान गायक इस जमाने का द ग्रेट मोहम्मद दानिश। उन्हीं का शादी पे ये अति सुंदर बयान वो अपने वाइफ के लिए गाया था रिसेप्शन डे पर। स्पेशल वेडिंग सॉन्ग डेडिकेटेड टू हिज लवली वाइफ फरहीन फरीदी।

मोहम्मद दानिश जी के मधुर आवाज में अति सुंदर छोटा सा नगमा आप सुना। इट्स अ स्पेशल वेडिंग सॉन्ग डेडिकेटेड टू हिज वाइफ फरहीन फरीदी। म्यूजिक अरेंज बाय ताबिश अली और नैला नवाज। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है हमारे प्रिय साथियों, जोर तोर से कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का। अगला बयान फ्रॉम द रोपोसो जेमरून, याद इस द सॉन्ग्स नेम, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का किंग ऑफ मेलोडी मैस्त्रो सोनू निगम जी के मधुर आवाज में। म्यूजिक अरेंजमेंट कंपोज बाय जबरदस्त संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती, किसी के याद में।

फ्रॉम द रोपोसो जैम रूम सोनू निगम के मधुर आवाज में आप सुना याद ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय सुनने वालों और एक बार फिर लाते हैं वही महान गायक पवनदीप राजन के मधुर आवाज में आप सुनेंगे कहीं ना कहीं महान संगीतकार जीत गंगुली के ब्यूटीफुल आवाज में।

0: है, क्या बात है।
1: इतना खुश हुआ था ये म्यूजिक डायरेक्टर जीत गंगुली जब ये रिकॉर्डिंग फिनिश हुआ था। ब्यूटीफुल सॉन्ग कहीं ना कहीं, कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो जीत गंगुली एंड द सॉन्ग इज रिटन बाय रश्मि वीरान। श्रोताओं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग आप सुन रहे हैं। वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए, तो जरा गौर फरमाए। कुछ नए नए ताजे ताजे लिख कर भेजा है यारों का यार जिगरी दोस्त भाई भूपेंद्र जी डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई सिटी। अर्ज किया है यारों की कुछ दोस्ती के बारे में शेर से। मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, मोहब्बत की भी कुछ अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं कि गम में आंसू निकले, जरूरी तो नहीं कि गम में आंसू निकले, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं। क्या बात है, वाह। इस खुदगर्ज जमाने में कोई किसी का नहीं होता, इस खुदगर्ज जमाने में तो कोई किसी का नहीं होता, खुशियां ही होती दुनिया में तो गम आंसू कौन रोता। गौर से देखना कभी बहते हुए आंसुओं को, गौर से तुम देखना कभी बहते हुए आंसुओं को, हंसती आंखों से बहने वाला हर आंसू खुशी का नहीं होता। सही बात है यारो, सही बात है। समंदर में उतरता हूं तो आंखें भीग जाती है, तेरी आंखों को पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती है, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूं तो आंखें भीग जाती है। यूं ही आंखों में आ गए आंसू, तुम्हें देखकर यूं ही आंखों में आ गए आंसू, जाइए आप कोई बात नहीं, अब तो मेरी आंख में एक अश्क भी नहीं, पहले की बात और थी, गम था नया नया ना, तो अब मेरी आंख में एक अश्क भी नहीं। आखिरी शेर यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, ये रब गम ए हिजड़म में इतना तो किया होता, ये रब गम ए हिजड़न में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पे है वो दस्त ए दुआ होता। तो ये था कुछ शेर समाड़े शेर के चाहने वालों के लिए। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को मशहूर गाने वाला नौजवान कलाकार बिकेन फ्रॉम द इंडियन आइडल सवाई भट्ट जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे हिमेश रेशमिया के साज पर मौजूद है।
2: जब तू साथ नहीं होती तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

A masterpiece of composing by maestro Himesh Reshamiya. Beautiful song लिखा है भी हिमेश रेशमिया ये गाने को और सुना दिया आप सभी को मशहूर गाने वाला इस जमाने का द ग्रेट सवाई भट्ट। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं एक और मशहूर गाने वाली हेल पॉपुलर वर्ड फिया इंडियन आइडल अंजना पद्मनाभन का लाइव रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे लैला ओ लैला।

zeker een wow. Remember, ladies and gentlemen, it's a live recording. And remember the name, Anjana Padmanabhan. Beautiful song. तो इसी तरह से कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं और वो भी खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि दो मशहूर अनाउंसर साथिया कॉलिक समार और हम लोगों का स्टूडियो में उपस्थित हो गया है मैस्त्रो चंद्रशैन गंगा जी और साथ दे रहा है भाई यूसुफ सीतू जी। 8 बजे के बाद आप सुनेंगे इन दोनों का एक अति सुंदर प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नाम कार्यक्रम। और मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में आप लोग लाइव भी तार करके एक मनचाहा नगमा को गुजारिश कर सकते हैं। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। मेरे बात ये लोग जरूर आएंगे। अब इस वक्त जोर तोर से काम कर रहे हैं, कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह सब कनेक्टिंग चेक कर रहे हैं, तो जरूर इंतजार कीजिए। पुराने स्टाइल की तरह आ गया है ये दोनों मशहूर कॉलिक्स पथेब वसखमिस्त हैं। अगला बयान येमी येमी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय द क्वीन ऑफ मेलोडीज जमाने का डेगड़े श्रेया घोषाल जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे। जेमी जेमी साथ दे रहा है इस जमाने का सिंगर टाइक। म्यूजिक कंपोज बाय रजत नाजपाल। क्या बात है, तो येमी येमी करल जाए ना।

Jimmy Gimme, beautiful song by the Queen of Melody, Zamanika, the great Shreya Ghoshal, Jika, beautiful new song. Saat der het Taik, music composed and arranged by Rajat Nagpal and Taik. इसी तरह से कुछ नगमे चुना हूं आज के इस हसीन कार्यक्रम के लिए. आई होप यू गाइस लाइक द नंबर्स. अगला बयान मोहब्बत बुला रही है और वो साथ ही साथ आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम में आखिरी बयान आप सुनेंगे. मशहूर गाने वाले जमाने का द ग्रेट पायल देव साथ दे रहे है. इस जमाने का महान गायक द ग्रेट ग्रेट ग्रेट अंकित तिवारी. म्यूजिक कंपोज बाय पायल देव अंत आदित्य देव. मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम. लास्ट द फ्लोट.

मोहब्बत बुला रही है। और गाने वाले महान गायक इस जमाने का ग्रेट अंकित तिवारी और पायल देव की आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। लिखक कुणाल वर्मा की अल्फाजे एंड म्यूजिक इज अरेंज एंड कंपोज बाय आदित्य राय एंड पायल देव। हमारे प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं यारों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में लिए करने के, यही आशा उम्मीद है कि आप सभी को मेरा पेश किया हुआ कार्यक्रम आई होप जरूर पसंद आया हुआ होगा। आप श्रोताओं को सेवा करने वाले हैं ये मशहूर अनाउंसर साथी काफी दिनों बाद मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा जी और साथ दे रहे हैं उनका यारों का यार जिगरी दोस्त भाई यूसुफ सेतु। तो जरूर इन दोनों का कार्यक्रम को जरूर सुनते रहना। गीत और गजल और इस गौर नाम कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और अगर आप लोग एक नगमा को गुजारिश करना चाहते हैं इन दोनों का कार्यक्रम में, तो जरूर आप तार करें ओप 07-213-65-98 पर। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। मुझे आप सभी इजाजत दे, हमेशा की तरह जाते जाते कुछ ना कुछ सुना देता हूं। तो कल तो मैं सुना महान संगीतकार जुबिन नौटियाल के प्रोग्राम में, और वो गाया था ये गाना भी दादा हेमंत कुमार के याद में कि

उन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है अब द प्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बलैस्त्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाहुन एफएम पिंटनल पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल एंड बदंत है, जहां पर भी हो जी साल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार और प्रेम मोहब्बत के साथ आप सभी तक पहुंचे। मैं ढेर फिर लश्तर प्लेजीर के साथ अनतिलक। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक ऑर्गामान हो, ऑर्गा वुमन हो, इफनमेतन और खानी साथ, और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बेयोंस ऑफ द ईस्ट प्लाट्स, सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अप 070-213-65-98 पर, या तो आप तार करें अप 070-365-2247 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो, देन कैन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और फुल टीम की तरफ से इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन प्रार्थना किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें तैरेंस कंटोर यूरो अपनोल सीवन तक 2-13-65-98 होना चाहिए, 070-213-65-98 पर आप तार करें, या तो अब 070-365-2247 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो, देन कैन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, या तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने औरों को भी बनाए। En niet te vergeten om een beetje reclame voor ons te maken. Fahun Hindustani Radio, 24 hours at your service. Wat ik moet, ik nagma suna, dit aan aap, je dono, bhai, ben, jo jaren 80 me, dunia bhar me, halchal macha di thi. Met het nummer, aap jaisa koi, mere zindagi me aaye. एक अति सुंदर बयान है, भाई बहन हमने मिलके गाए हैं, बीबीसी लाइफ 1980, तेरे कदमों को चूमूंगा, नासिया एंड सोहेब हसन।

0: बहन सोहेब अंत नाजिया हसन के मधुर आवाजों में थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। 1980 बीबीसी लाइव ऑन द हाईक्यू ऑडियो टेलीविजन स्टूडियो। तो दोस्तों वादा के मुताबिक जैसे मैं आप सभी से कह चुका था, कुछ कहानियां और कुछ बातें सुनेंगे आप ये महान गाने वाली के बारे में। महान अभिनेत्री बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का तबस्सुम ने एक इंटरव्यू लिया था आईडीआर 80 इन बॉलीवुड मुंबई। तो मिल के सुनते हैं
1: ये शेर। सुनिए, फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, जिसको हंसता हुआ पाओगे परेशान होगा। पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नाजिया हसन से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जब मैंने ये सुना कि उनकी डेथ हो गई और वो भी सिर्फ 35 साल की उम्र, उन्हें कैंसर हो गया था। और उसके बाद उनकी बहुत सी प्यारी प्यारी बातें मुझे याद आने

0: से बात होती है। आइए आज उस लड़की से बात करें जिसके एक ही गाने से फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बात बन गई, नाजिया हसन। नाजिया
1: जी,
0: कैसी हैं आप?
1: ठीक ठाक।
0: बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये चाहती हूँ कि आज प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले क्यों ना हम आप ही की आवाज में, खालिस शुद्ध आपकी आवाज में, यानी बगैर साजों के, वो गाना सुन लें जिसने तहलका मचाया था।
1: आप जैसा कोई।
0: बिल्कुल
1: ठीक है।
0: जरा गुनगुना।

0: पर।
1: अरे रे रे रे, ऐसा लगा जैसे दिल चलते चलते दिल की धड़कन बंद हो गई हो।
0: आगे बढ़ने से पहले मैं जो आपको देख रही थी उसे देखते हुए एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि आप में निस्वानियत ग्रेस बहुत ज्यादा है, और ये लोच ये लचक खासतौर पे गाते हुए जो आप मगन हो जाती हैं और आपके अंग अंग से रिदम फूटा पड़ता है, ऐसा लगता है कि आपने डांस भी सीखा है।
2: नहीं
0: नहीं सीखा?
2: नहीं।
0: तो यानी सारी कारस्तानी जो है बगैर सीखे हुए हो रही है?
2: कारस्तानी
0: कारस्तानी मतलब ये कयामत, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो है बगैर सीखे हुए सब चला आ रहा है। तो आपको ये महसूस नहीं होता कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए अगर वाकई गाना भी और सीख लें और डांस भी सीख लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा?
2: पता नहीं, अभी तो नहीं सीखा। अभी स्कूल है ना तो इतना टाइम नहीं मिलता, जब शायद स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद देखूंगी, लेकिन अभी तो नहीं कर रही कुछ।
0: कर तो कुछ नहीं रही, लेकिन करने की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि वाकई और सीखा जाए और ज्यादा परफेक्ट हुआ जाए इस लाइन में?
2: नहीं
0: नहीं, ये तमन्ना बहुत बहुत खुशकिस्मत हो, वरना तो लोग इतनी ज्यादा तमन्नाएं करते हैं कि तमन्नाओं के बोझ से दम निकल जाता है। अच्छा, हमने सुना है और अखबारों में भी बहुत पढ़ा है कि आपको फिल्मों में काम करने की ऑफर भी मिल रही है।
2: जी,
0: तो क्या आप एक्सेप्ट कर रही है?
2: नहीं,
0: मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ।
2: क्यों?
0: बस जो मैं सवाल करती हूँ उसका जवाब आप देती हैं। नहीं
2: नहीं,
0: ये जी और नहीं नहीं चलेगा बिल्कुल।
2: आपको मैं आपको बताती हूँ जी, ऑफर्स हैं लेकिन मुझे शौक नहीं है फिल्म्स में एक्ट करने का, तो मैंने सबको कहा कि नो, सब कहते हैं नो, आई सेड नो।
3: एक शेर याद आ गया, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। ऐसी ही यादें आपके साथ शेयर करती रहूंगी, देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।

तो अभी आप श्रोताओं ने सुना कुछ बातें तबस्सुम महान अभिनेत्री हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इंटरव्यू कर रही थी मशहूर गाने वाली नासिया हसन जी को। अब आप सुनिए।

0: She created history in Bollywood at the age of 14. But aage suniye.
1: कलाकार थीं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदल डाला था। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में संगीत जगत में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज भी कायम हैं और फिल्म जगत में एक मिसाल है। और खूबसूरती को देखकर दोनों देश ही नहीं दुनिया भर से फिल्मों में काम करने के प्रस्ताव आने लगे थे और फिल्म निर्माता उन्हें ब्लैंक चेक तक दे रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगीत के शिखर पर पहुंचने के बावजूद ये गायिका एक्टिंग और ग्लैमर से कोसों दूर रहती थी?
2: मुझे दिलचस्पी नहीं है अदाकारी से।
3: कोई दिलचस्पी नहीं?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जरूर है कि मुझे अपनी एजुकेशन से बहुत लगाव है।
1: क्या आप सोच सकते हैं कि इस गायिका को अपनी सीधी सादी जिंदगी जीने के बदले पति के धोखे और घरेलू हिंसा जैसी कीमत तक चुकानी पड़ी थी?
4: लेकिन मेरा
1: क्या आप यकीन करेंगे कि बहुत कम उम्र में ही इस गायिका की मौत हो गई और उनकी लाश को भी सुकून पाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ा।
5: The fancy?

0: थी ये सिंगिंग सेंसेशन जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर गाना शुरू किया और तहलका मचा दिया।
1: जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए।
0: क्या खासियत थी उनकी आवाज में जो आज दशकों बाद भी उनका जादू कम नहीं हुआ है। क्यों इतनी उपलब्धियों के बावजूद निजी जिंदगी में नहीं मिल पाया उन्हें कोई सुख, और क्यों उनके दिलफेंक पति पर लगा था उन्हें जहर देने का संगीन आरोप, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आरजे कंगना। जी हां, वही फिल्मी किस्से वाली आरजे कंगना। जो लोग बॉलीवुड को कुछ दशक पहले से जानते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 80 और 90 के दशक की मशहूर गायिका नाजिया हसन की। पीढ़ी बेशक इनके नाम से कम वाकिफ होगी, लेकिन उस दौर के संगीत प्रेमियों के लिए नाजिया की आवाज दीवानगी से भी कहीं बढ़कर थी। दुनिया नाजिया की आवाज की दीवानी थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी दर्दनाक थी। आज हम आपको सुनाएंगे इस गायिका को 15 की उम्र में मिली करिश्माई पॉपुलैरिटी और 35 साल में हुई दर्दनाक मौत के दरमियानी उथल पुथल भरे 20 साल की अनसुनी दास्तान। लेकिन उससे पहले एक नजर उनके छोटे से शुरुआती जीवन पर। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची पाकिस्तान में हुआ। ये पाकिस्तान के नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थी। कराची में जन्म लेने के बाद इनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई। नाजिया हसन की मां मुनीजा और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अदाकारा जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो बासिर दंपत्ति के लंदन स्थित घर पहुंची तो कमरे में उनके नजर गिटार पर पड़ी। वो झट से पूछ बैठी, अरे ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया, मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया उस समय घर पर ही थी।

0: जीनत को एक गाना सुनाया जो सभी को काफी पसंद आया। एक दिन बाद जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा, इंडिया में एक्टर फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। मुझे लगता है नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी। यह किस्सा नाजिया की मां ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सुनाया था। मुनीजा ने पहली बार में तो इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने कहा कि वो पति से बात करके ही कोई जवाब देंगी। शुरू में तो बासिर नाराज हुए लेकिन कुछ मिनटों की बहस के बाद उन्हें अपनी पत्नी मुनीजा के आगे झुकना पड़ा। जीनत ने मुनीजा और नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से करवाई। इस फिल्म के गानों और स्कोर के लिए वैसे तो कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन कुछ गानों के लिए उन्होंने लंदन के एक भारतीय मूल के संगीतकार बिद्दू से बात की थी। बिद्दू आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों से कमाल का संगीत बना रहे थे जो उन दिनों पश्चिमी देशों में बेहद लोकप्रिय था। 15 साल की नाजिया की आवाज से इम्प्रेस होकर फिरोज खान ने उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया जो 1980 में रिलीज हुई थी। नाजिया ने फिल्म के लिए बिद्दू के संगीत निर्देशन में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाया जो चार्ट बस्टर साबित हुआ।
1: Deze ultra comfort lapvleugels zijn zo ontworpen dat het maandverband beter...

0: की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसके लिए नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गईं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना चार्टबस्टर साबित हुआ। एक दिन मुनीजा के पास मशहूर निर्माता निर्देशक राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड नाजिया को मिलेगा। फिर पूछा, क्या आप अवार्ड लेने भारत आएंगी? ऐसा पहली बार हुआ था कि 15 साल की उम्र में किसी कलाकार को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया हो। भारत में दिया जाने वाला ये पुरस्कार इससे पहले किसी पाकिस्तानी को नहीं दिया गया था। उनसे पहले और बाद में आज तक फिल्म फेयर अवार्ड के इतिहास में ऐसा दोबारा नहीं हुआ। संभवतः पहली बार इस अवार्ड को पाने वाले को फंक्शन से पहले ही बता दिया गया था। बहरहाल साल 1981 में पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों ही फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीमेल सिंगर का ये पुरस्कार नाजिया को आप जैसा कोई गाने के लिए दिया गया था। अवार्ड नाइट के दिन जिस होटल में नाजिया ठहरी थी, वहां दर्जनों मीडिया कर्मियों का जमावड़ा उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। पहले गाने के बाद ही कम उम्र की नाजिया एक नेशनल सेंसेशन बन गई। उन्होंने 1981 में ही संगीतकार बिद्दू के साथ मिलकर म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया। एल्बम भारत और पाकिस्तान का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। भारत में तो पहले दिन ही इसके 1,00,000 रिकॉर्ड्स बिक गए। साथ ही इसे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के अलावा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका और रशिया में भी काफी पसंद किया गया। एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थी। इससे पहले विदेशों में भारतीय फिल्मों के गाने ही लोकप्रिय होते थे, लेकिन डिस्को दीवाने पहला ऐसा नॉन फिल्मी एल्बम था जो बॉलीवुड संगीत पर भी भारी पड़ा। ब्राजील में ये पहला कोई दक्षिण एशियाई एल्बम था जो चार्ट बस्टर बना था। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर भी थीं। उनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। कहते हैं फिल्मों के प्रोड्यूसर उन्हें ऑफर में ब्लैंक चेक तक दे देते थे, लेकिन हर बार नाजिया ऑफर ठुकरा दिया करती थी। दरअसल परिवार वाले मानते थे कि नाजिया के लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। एल्बम डिस्को दीवाने इतना पॉपुलर हुआ कि नाजिया जहां जाती थी वहां भीड़ लग जाया करती थी। एक बार जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें देखने भर के लिए 1,00,000 लोग जमा हो गए थे। नाजिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए बिद्दू ने उन्हें अगले साल 1982 में अपने म्यूजिक एल्बम बूम बूम में एक्टिंग करने का भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाना गाया। बाद में इस एल्बम के गानों पर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था स्टार। रिलीज हुआ नाजिया और जोहेब का एल्बम यंग तरंग पाकिस्तान का पहला एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो था। ये उस जमाने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम था। 1986 में नाजिया ने बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए जिनके नाम थे दिलवाला, इल्जाम और मैं बलवान। साल उन्होंने अफ्रीका में बनी भारतीय फिल्म अफ्रीकाडली शीला के लिए भी प्लेबैक किया। '87 में नाजिया और जोहेब ने एक एल्बम बनाया जिसका टाइटल था हॉटलाइन। नाजिया गाने तक ही सीमित रहीं, लेकिन फिल्मों में काम करने के ऑफर उन्हें लगातार मिल रहे थे। कहते हैं अपनी जीवन के आखिरी दौर में जब राज कपूर अपनी फिल्म हिना के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने नाजिया हसन को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। 1992 में नाजिया ने अपने भाई जोहेब के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज किया, जिसके ठीक बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका आखिरी एल्बम है। नाजिया का परिवार वैसे तो पढ़ा लिखा था, लेकिन वो फिल्मों में काम करने को नीचा समझता था। पर्सनल लाइफ में फोकस करने के लिए नाजिया ने 1992 में हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। लंदन के रिचमंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 में नाजिया ने यूनाइटेड नेशंस में वुमेन्स इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और बाद में उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की। 30 मार्च 1995 को घर वालों ने नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से करा दी। इश्तियाक से नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने बेटे अरीज को जन्म दिया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। नाजिया का पति इश्तियाक बेग एक दिलफेंक किस्म का इंसान था।
1: When you're meeting you, you look prettier, huh? You look smarter, you look younger. What is the secret of
2: Botox, darling?
0: कहते हैं उसका एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली तो घर में झगड़े और बढ़ गए। ऐतराज करने पर पति उनके साथ मारपीट करने लगा। नाजिया को बाद में पता चला कि उससे पहले इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन ये बात उनके घर वालों से छिपाई गई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक ने फिलीपींस की डांसर हेजल से शादी की थी, जिससे एक बेटा इमरान बेग था। उसकी दूसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस शाजिया से हुई थी। दूसरी पत्नी ने बेग की मेंटल कंडीशन खराब होने पर तलाक ले लिया था। दोनों शादियां नाजिया के परिवार से छिपाई गई थी। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के नामी न्यूज़पेपर डेली जंग को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि उनका पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था कि मीडिया में ये कहा जाए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं था। इस बीच नाजिया गंभीर रूप से बीमार पड़ी और उन्हें फेफड़ों का कैंसर डिटेक्ट हुआ। नाजिया पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उनके पति ने कैंसर के इलाज का खर्च उठाने से भी इनकार कर दिया। नाजिया कहती थी पति इश्तियाक बेग के साथ रहने की जगह वो मरना ज्यादा पसंद करेंगी। नाजिया के भाई जोहेब ने भी एक स्टेटमेंट में बताया था कि उनकी बहन को उसके पति ने बंदी बनाकर रखा था। परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया था और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। इसके बाद नाजिया का इलाज उनके घर वालों ने लंदन में करवाया। वहां नाजिया की 5 कीमोथेरेपी हुई। इलाज के दौरान नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पति उन्हें जहर दे रहा था और स्लो पॉइजन के असर से उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। कहते हैं ये बात लंदन में नाजिया का इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी जानते थे। नाजिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो इस बात की जांच की जाए। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत बिगड़ने पर उन्हें लंदन के नॉर्थ लंदन हॉस्पाइस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत सुधर रही थी और डॉक्टर्स उन्हें घर भेजने वाले थे, लेकिन वो घर नहीं लौट सकी। 13 अगस्त 2000 को सुबह करीब 9:15 बजे हॉस्पिटल से नाजिया की मां मुनीजा को कॉल कर जानकारी दी कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। मां अस्पताल के लिए निकली, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही नाजिया की मौत हो चुकी थी। हालांकि नाजिया की मौत बीमारी से हुई थी, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वकील द्वारा नाजिया का आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी करवाई। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स का गोल्डर्स ग्रीन स्थित घर और पति का घर सीज कर दिया। दोनों घरों में फॉरेंसिक टीम ने डिटेल में जांच की। यूके में कुछ महीनों बाद एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड के अनुसार नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया था। उन्होंने पाया कि ये एक नेचुरल डेथ थी। पाकिस्तान के नामी न्यूज चैनल जियो टीवी के अनुसार 13 अगस्त को हुई नाजिया की मौत के बाद 5 महीनों तक जांच के लिए उनका शव लंदन के मुर्दा घर में रखा गया था। परिवार को उनका शव 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को सौंपा गया था। नाजिया का अंतिम संस्कार लंदन के हिंडन कब्रिस्तान में हुआ था। पहले उन्हें पाकिस्तान लाया जाना था, लेकिन शव मिलने में देरी होने से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नाजिया के पति ने उनकी मौत के बाद तलाक की बात को निराधार कहा। उसने कहा कि मौत के समय भी नाजिया उनकी पत्नी थी। हालांकि घर वालों का कहना था कि नाजिया ने मौत से 3 महीने पहले ही उसे मुस्लिम लॉ के तहत तलाक दे दिया था। इश्तियाक आज भी नाजिया को अपनी पत्नी मानता है, जबकि नाजिया के बेटे अरेज की कस्टडी उसे नहीं दी गई। नाजिया के मौत के बाद 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। नाजिया की जगह ये अवार्ड उनकी मां लेने पहुंची थी। उनकी मौत के बरसों बाद 2012 में एक बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उनके गाए गाने का कवर वर्जन बनाया गया, जिसमें उनकी ओरिजिनल आवाज का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी साल एक और फिल्म मिस लवली में भी उनके गाए पुराने गाने का इस्तेमाल किया गया था, जो खासा फ्रेश लगा। नाजिया हसन बेशक संगीत और फिल्मों में अपना लंबा करियर नहीं बना पाई, लेकिन उनकी पहचान बेहद सशक्त थी। वो दिल की बहुत दयालु थी और गानों से मिलने वाली अपनी सारी कमाई पाकिस्तान के जरूरतमंद बच्चों को दान कर देती थी। इसके अलावा वो फंड इकट्ठा करने के लिए भी कई कॉन्सर्ट्स करती थी। इन्होंने बैटल अगेंस्ट नारकोटिक्स यानी बैन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया था, जो ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में काम करता था। नाजिया अक्सर स्कूल में जाकर बच्चों को खिलौने बांटा करती थी। ये अपना हर बर्थडे बच्चों के साथ मनाती थी। मौत के बाद आज भी इनका परिवार ऐसे ही इनका जन्मदिन मनाता है। नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो ये कर ना सकी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। अगर आपके पास भी नाजिया हसन से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
2: होता है यारो ये दर्द से भरा हुआ कहानी आपने सुने, महान गाने वाली नाजिया हसन के कुछ नगमे और अंत में कैसा उनका आखिरी सांसें छूटी, ये सब बातें आप सुने, मेरा तो दिल भर आया। क्योंकि पहला दिन से जब मैं ये महान गाने वाली की नगमे सुने, निगदीन तख्तक फ्रॉम द मूवी कुर्बानी, आप जैसा कोई व्यवहार ओक, या इन दी टाइट ओक बेसिक मेट म्यूजिक एक्सपेरिमेंटेरस वेव दिट नंबर फाक लाइव गस्पेल्ड आप जैसा कोई, दिस het blijft me altijd wat doen. De agri bayan apa suninge aaj ke is hasin program mein special the great great great gaane wali Nazia Hasan ke, to uske baad kuch Bollywood naye naye super hit songs taiyar hai aap sabhi ko sunane ke liye. To unke yaadi to hamesha rahenge hum logo ke paas. To passend nummer om afscheid nu van haar te nemen met dit programma Tiriyad, The Great Nazia Hasan.

याद द ग्रेट ग्रेट नाजिया हसन। और यही उम्मीद है, आशा है कि आप लोग ये महान गाने वाली को हमेशा याद रखेंगे। अगला बयान कैसे बढ़ते हैं, बिल्कुल नया सॉन्ग है और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने के मशहूर गाने वाला द ग्रेट जुबिन नौटियाल जी, जिनका कॉन्सर्ट भी आने वाले शनिवार को है सामदाम में। Ik denk dat ik er naartoe ga met mijn dochter en een hele lieve nichtje van ons. Dus ja, ik verheug me erop. Aure saat dere hi hey nechma. Jo ap suninge mashur gane wali is zamane ka de great Palak Mushal. Mahan sangeetkar de great Himesh Reshamiya ka likha hua aur compose kiya hua ye beautiful song. Naya pyar, naya ehsaas. स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। न्यू

अति सुंदर बयान, नया प्यार, नया एहसास। महान गायक इस जमाने का द ग्रेट जुबिन नौटियाल और द ग्रेट पलक मुशल के आवाजों में हिमेश रेशमिया का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग।

के सावन में पानी बरसा बहुत, अब के सावन में पानी बरसा बहुत, पानी की हर बूंद में वो आए याद बहुत। इस सुहाने मौसम में साथ नहीं कोई, इस सुहाने मौसम में साथ नहीं कोई, बादलों के साथ इन आंखों से पानी बहा बहुत, और वो भी उनकी याद में। तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। यारो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है, और ये अति सुंदर बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने के महान गायक द ग्रेट अरिजीत सिंह, साथ दे रही है मशहूर गाने वाली द ग्रेट नीति मोहन कुणाल वर्मा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कंपोज बाय तानिक बख्शी एंड कृष्ण कपूर। तेरे संग इश्क हुआ,

इश्क हुआ और वो भी तेरे संग इश्क हुआ, ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया महान गायक अरिजीत सिंह और नीति मोहन के आवाजों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय मैस्त्रो तानिक बाक्षी कृष्ण किशोर। तुम्हारे प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाला है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का महान अनाउंसर साथी दवानंद ओली मास्टर अमित कुमार जी। तो मुझे आप सभी इजाजत दे या शोमी लेकर घर को जा रहा हूँ यारो, कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम ये आशा उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं फिर आप सभी से मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए यारो। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। और जाते जाते हमेशा की तरह

अभी प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर

0: ऑन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है दापुरुष रेडियो पर नतीलक उक्त ब्लास्ट्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतीलक बदंग, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी का ढेर सारा प्यार, दुलार, प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो मैं ढीलफी लजतर प्लेजीर के साथ। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक ऑर्गामन हो, ऑर्गा वुमन हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर, और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहते हैं, द प्लस रेडियो के लहर द्वारा एंड वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहर द्वारा। तो जो भी रेडियो का काम हो, देन कन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइल सस्ते दाम, सर्विस और गारंटी क्वालिटी के साथ, स्टार्ट बेयॉन्स ऑफ द ईस्ट प्लाट्स। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 07-23-13-65-98 या तो op 070-365-2247, bellen tijdens kantooruren. Dus op je radio kan ho, denk aan Fahon Hindustani Radio. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं तीनों के लिए फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें ओप 07-23-13-65-98 पहले तेडेंस कंटोर यूर ओप 07-23-65-22-47 पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए। वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स सेलेक्ट किया हूँ, पुराने नंगड़े में के कुछ साथ और वो बाकी में आप सुनेंगे। अगला बयान एक बिल्कुल नया सॉन्ग है फ्रॉम लेट 2023 का, ये अति सुंदर बयान सुनाने वाले है इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी मैस्ट्रो सोनू निगम जी। लिखा है श्रद्धा पंडित और कॉम्पोज किया है ये अति सुंदर बयान को सलीम सुलेमान जी। ब्यूटीफुल सॉन्ग अफरा तफरी, गो डैडी एंड भूमि।
1: ले लो सवारी हल्की और भारी, आजा आजा, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, अरे आजा आजा आजा भाई, तो स्कूटी पे क्या करोगे, चल के अंदर बैठो, ले जाऊंगा, आजा आजा आजा आजा। ले लो सवारी भैया हल्की हो या भारी, मजनू के टीले से राजौरी तक जारी।

0: मजेदार डिफिकल्ट सॉन्ग सुना दिया आप सभी को इस जमाने का किंग ऑफ मेलोडी डिग्रे सोनू निगम जी के मधुर आवाज में, म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान एंड सॉन्ग्स रिटन बाय श्रद्धा पंडित। अगला बयान एक अति सुंदर बयान है, कच्ची यारी सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का गाने वाली हशमत सुल्ताना के ब्यूटीफुल आवाज में। लिखा है ये बयान को एम रवि और म्यूजिक दिया है शॉन ने। कच्ची यारी।
1: हां जी, किसका वेट कर रहे हो?
2: अरे है कोई स्पेशल गेस्ट।
1: स्पेशल गेस्ट? मुझसे ज्यादा?
2: तुझसे ज्यादा नहीं।
1: तो करें केक कट?
2: करते हैं।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग कच्ची यारी गाने वाली थी हशमत सुल्ताना, म्यूजिक बाय शॉन एंड द सॉन्ग इज रिटन बाय एम रवि।
1: ग्रोथ एंड क्लाइंट ड्राइविंग की
0: इसी तरह से कुछ नगमे लेकर आया हूं यारो, जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन नए नए हैं। एक और इसी तरह का सॉन्ग आप सुनेंगे कसम से, इस जमाने का मशहूर गायक, म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर द ग्रेट अरमान मलिक। दो भाई है अमाल और अरमान मलिक, तो ज्यादा से ज्यादा तो अरमान मलिक ही गाते हैं लेकिन अमाल मलिक भी एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है और साथ ही साथ ग्रेट कंपोजर। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि पुराने जमाने का महान संगीतकार द ग्रेट सरदार मलिक के ये नवासे है, पोता है ये दो। और महान संगीतकार अन्नू मलिक के भाई के बेटे, तो उन्हीं के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान कसम से, द प्रपोजल।
2: She has absolutely no idea. Let's go.

कसम से ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय ब्रदर अमाल मलिक अपने भाई अरमान मलिक के लिए। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान द प्रपोजल। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी दिल थाम कर बैठ जाएंगे, क्योंकि अब से लेकर शायद अगले हफ्ते तक आप सुनेंगे एक अति सुंदर स्पेशल, एक महान गाने वाली की जो उनका जन्म हुई थी इंग्लैंड लंदन में, और रूट्स तो पाकिस्तान, बाद में इंडिया से जुड़ गई। एक ऐसा कलाकारा जो अपने 14 साल के उम्र में पूरी दुनिया, खास करके हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, भारत देश और पाकिस्तान, इंग्लैंड, पूरे यूरोप में इतना हलचल मचाया था कि हम क्या कहे। आप सभी को तो स्टोरी मालूम है, मैं बात कर रहा हूँ महान गाने वाली मलकाए हुस्न, मलकाए संगीत, दिग्गजित नाजिया हसन जी के बारे में। तो अब से लेकर कुछ बीते हुए हफ्ते तक इनके नगमे आप सुनेंगे, और बाद में मैं आप सभी को सुनाऊंगा कि ये महान कलाकारा का अंत कैसे इतने कम उम्र में हो गई थी। तो एक अति सुंदर बयान है, इतनी फीलिंग से वो गाती थी, और खूबसूरती के जो मैं तारीफ करूं तो वो भी कुदरत ने बहुत ही खूबी से सजाया और बनाया था ये महान गाने वाली को। सहिफ्ट ओक हिल फेल आन बीडिंग खात ऑम इन द फिल्म मोख अक्तेर मार सहिफ्ट het altijd geweigerd, altijd gefocust op haar zang, maar आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि ze hebben het haar gewoon niet gegund, haar eigen man heeft het haar niet eens gegund. तो नाजिया हसन जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे धुंधली रात के वो सपने, क्या बात है साए। रियल स्टोरी।

मेरी जिंदगी में आए, फ्रॉम द मूवी कुर्बानी 1980। महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी के साथ पर बिद्दू का लिखा हुआ अति सुंदर बयान सुनाया आप सभी को मशहूर गाने वाली फ्रॉम द 80s द ग्रेट नाजिया हसन। अगला बयान आप सुनेंगे ये महान कलाकार के ब्यूटीफुल आवाज में एक बार फिर द ग्रेट नाजिया हसन का ये सुपर हिट सॉन्ग लेकिन मेरा दिल तो रो रहा है।

0: Beautiful song, wonderful song om kippenval van te krijgen. Ja, Gatiti Emhan Ganiwali uit de jaren 80. Helaas, agarap Emhan Ganiwali ke daastan sunenge. To aankhon mein aansu to zarur bhar aayegi. Us aan haar einde kwam. En dat door iemand die ze haar hele leven had vertrouwd. Hota hai yaro, hota hai. Lekker chalte hai ek aur ati zunder bayaan. Wo sunayenge aap sabhi ko. Lekin usse pehle na, kuch sher shayari ho jaye na hamare shers ke chahne walon ke liye. To kuch naye naye taze taze shers bheje hai hamare yaro ka yaar bhai Bhupendra ji. डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई हमेशा की तरह और इस बार कुछ दोस्तों के बारे में ये शेर शायरी जाता है। अर्ज किया है यार की मुलाकात मौत की मेहमान हो गई, मुलाकात तो मौत की मेहमान हो गई, नजर की जिंदगी सुनसान हो गई, अब मेरी सांस भी मेरी नहीं रही, अब तो मेरी सांस भी मेरी नहीं रही, ये जिंदगी आपकी फ्रेंडशिप पर कुर्बान हो गई। क्या बात है, वाह जीरो राजे। यूं आईने से कब तक दिल बहलाओगे, यूं आईने से कब तक दिल बहलाओगे, जब अंधेरा होगा खुद को तन्हा पाओगे, हम जैसा दोस्त रहे अगर आपके साथ, हम जैसा दोस्त अगर रहे आपके साथ, कसम से उम्र भर तन्हाई का महसूस भी आप ना कर पाओगे। हम दोस्तों को भूलते नहीं, हम दोस्तों को भूलते नहीं, मगर ये बात जताते भी नहीं, दोस्तों को हमेशा रखते हैं याद, दोस्तों को तो हमेशा रखते हैं याद, हम भूलने के लिए दोस्त बनाते नहीं यारो। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर भी नहीं होती, दोस्ती यूं तो कच्चा धागा है, दोस्ती यूं तो कच्चा धागा है, मगर इस धागे से मजबूत कोई संजीर भी नहीं होती। वक्त मिले तो हमें भी याद कर लेना, वक्त मिले तो हमें भी याद कर लेना, पल पल ना सही दिन में एक बार याद कर लेना, दोस्त होंगे आपके हजार, दोस्त होंगे आपके हजार, पर हम भी उनमें से एक है इतना याद रखना। बिछड़ने वाले को याद में क्या दोगे, बिछड़ने वाले को याद में क्या दोगे, सोते हुए को ख्वाब में क्या दोगे, हम चाहते हैं उम्र भर की फ्रेंडशिप, हम तो चाहते हैं उम्र भर की फ्रेंडशिप, क्या वादा मेरे इस सवाल का जवाब क्या दोगे। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, मुस्कुराना ही खुशी नहीं होती, मुस्कुराना ही खुशी नहीं होती, उम्र बिताना ही जिंदगी नहीं होती, खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों का, क्योंकि दोस्त कहना ही दोस्ती नहीं होती। ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अब आप सुनेंगे एक लाइव रिकॉर्डिंग ये महान गाने वाली की, नाजिया हसन लाइव इन कॉन्सर्ट दुबई। ब्यूटीफुल सॉन्ग बूम बूम टुगेदर विद ब्रदर सोहेब हसन।
1: ख्वातीन हज़रात, नाजिया

बूम बूम नासिया हसन लाइव इन कॉन्सर्ट दुबई में इन 1982। महान गाने वाली नासिया हसन जी का स्पेशल आप सुन रहे हैं। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, एक और ब्यूटीफुल सुपरहिट सॉन्ग आप सुनेंगे। आईडीआर 84 में ये सॉन्ग रिलीज किया गया था, आंखें मिलाने वाले, और साथ दे रहे हैं नासिया हसन का ब्रदर सोहेब हसन। उस जमाने में ये दोनों एक महान संगीतकार जोड़ी के साथ हमारे पूरी दुनिया में लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। तो उन यादें को हम लोग जरूर ताजा करें ना यार। तख्त का जो ये डिस्को म्यूजिक जब निकाला था तो पूरी दुनिया में, खास करके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में भी हलचल मच गए थे।

वाले यंग तरंग उस जमाने का द ग्रेट सिंगर फ्रॉम द 80s द वन एंड ओनली मलकाय हुस्न मलकाय संगीत द ग्रेट नाजिया हसन जी के मधुर आवाज में साथ दे रहे थे भाई सोहेब हसन. म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो बिद्दू. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है आप सभी से विदा लेने को. तो आने वाले हफ्ते में आप सभी को मैं कुछ और नगमा सुनाऊंगा ये महान गाने वाली को जो इन द यार एंड 80 is ze doorgebroken, eerst in Londen natuurlijk met maestro Bidou en werd ontdekt door Mahane Abhineta, de great actor, filmproducer Firoz Khan. Aur wo mila diya Mahan Sangeetkar, de great Kalyan Ji Anand Ji. En zo is ze dan toen doorgebroken door film Kurbani wereldwijd, vooral in India, daarna Pakistan en natuurlijk heel Europa en vervolgens de hele wereld waar Bollywood films gedraaid worden en ook naar Bollywood filmmuziek geluisterd worden. तो उस जमाने का ये महान कलाकारा इतने नाम कमाई और या eigenlijk wou ze nog verder studeren, maar je weet, soms is de druk van familie en ouders veel te groot om snel te kunnen trouwen. En daarna uiteindelijk heeft ze het toch toegegeven en ze is getrouwd en na haar bruiloft is het even een tijdje goed met haar gegaan. En verder van de story ga ik u volgende week verder vertellen. En natuurlijk samen met een paar nummers van haar ook af te draaien. Een tragische einde uiteindelijk voor haar. तो दोस्तों, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया. इस तरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि आप सभी को प्रोग्राम पसंद आया हुआ होगा. अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूं आवाज के जरिए. हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है हमेशा की तरह महान अनाउंसर साथ ही फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का द वन एंड ओनली मैस्त्रो अमित कुमार जी. उसके बाद मैस्त्रो बड़का भैया श्री दिलीप रामाधीन जी आप श्रोताओं को सेवा करने वाले हैं. तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना. फॉर मई से तैत फंदाख रोप हमारे प्री पी श्रोताओं, मिलते हैं आने वालों दिनों में. टेक केयर एंड लेट गुड ऑफ योर सेल्फ एंड ओक फाइन योर दीरबार नतीलक एंड लीव एंड लाट लीव. मैं तो हमेशा यही कहता रहा हूँ यारों की जियो और जीने दो, गाते रहो मुस्कुराते रहो और अपने आप को हमेशा दूसरों के मदद करने में हमेशा तैयार रहना यारो. क्यों? क्योंकि आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे. तो यही तक था आज का ये मेरे हिस्से का कार्यक्रम.

का हैप्पी स्टेशन फार हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होठों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होठ है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होठ तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होठ तो होठ होते हैं, तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरी जोन को घड़ियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दवाई के चले आए।

हो तुम्हें ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं अभी का हैप्पी सीजन 5 रेडियो राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्थ का क्नूप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

मेरे प्यार में तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जब दो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों। अब की बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरी होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

के होठों को तारीफ करते करते तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

न करो तू आईना, कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत की कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

आप एक हैप्पी स्टेशन 500 हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकाटिंग। नकाटिंग नकासानी

Tassifbox. और तसीफ बक्स आपके लिए पेश करेगा किसड़िया एक्स कर्म डॉन।

आपकी बार दोस्तों, ये मोक्सी अलेसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉलो में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।

फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

बिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कड़मा अनु ताकी मिनो लोबियू, हा सुमा ताकी मिनो लोबियू, मिलो बियू थ्रू।

मिक्सी पोको चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों, जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

उन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक, भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। हर एक काम जो आपके रेडियो के सिरे कराना है कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से, या चले आइए दफ्तर पर, खुला रहता है दोस्तों रोजाना। और आपको मानना चाहिए खास फरमाए जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह आपके पास है तो आप शौक से चले आए फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो के पास। पिया तू अब तो आ जा, आशा भोसले अरदीप बर्मन का म्यूजिक है। और जब ऐसा गीत है दोस्तों पिया तू अब तो आ जा, तो कौन हो सकता है जो ये गीत को एक्ट किया होगा? हेलन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। हेलन, जितेंद्र, आशा परेख, ये सब ही काम किया। फिल्म कारवा निहरी इन सीफन तक का फिल्म है। इसी फिल्म का सॉन्ग आशा भोसले के आवाज़ में आप सुनेंगे।

आजा पिया अब तो आजा, उसके बाद आजा पिया तुम्हें प्यार दो। बहारों का सप्ते फिल्म का नाम है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। और ये फिल्म में आशा परेख और रजिश खन्ना दोनों इस फिल्म में काम किया। तो आशा परेख रजिश खन्ना बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे बहारों के सपने, कति पतंग, आन मिलो सजना वगैरह वगैरह, नाइटिंगेल, लता दीदी एंड एडी बर्मन के म्यूजिक पर।

1969 के बाद, आपको मालूम है दोस्तों, एक फिल्म था जिसमें धर्मेंद्र काम किया आशा परेख के साथ, फिल्म आया सावन झूम के। वाह क्या फिल्म था दोस्तों, बलराज सहनी भी इस फिल्म में काम किया और एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड नाइटिंगेल लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग। धर्मेंद्र और आशा परेख दोस्तों ये दोनों भी बड़े बड़े फिल्मों में काम किए, जैसे आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि, और आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और बड़े बड़े फिल्मों में ये दोनों काम किया दोस्तों। आपको मालूम है उन दिनों में निखिल शास्त्र के बात है जब धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर था और आशा जी भी कुछ पीछे नहीं था, वो भी एक टॉप एक्ट्रेस था। तो दोनों का फिल्म आया सावन झुमका जो मैंने चॉइस करके रखा है, उसी फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे, राफी साहब एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के मीठी आवाज़ों में।

आया साउंड झूम के बाद। दोस्तों अब की बार उन दिनों के बाद है कपूर परिवार का सबसे हैंडसम बॉय शशि कपूर का फिल्म आमने सामने का एक सॉन्ग है, नैन मिला के चैन चुराना किसका है ये काम। शशि कपूर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया दोस्तों, और शशि भी शर्मिला के साथ और कई फिल्में बनाया, बड़े बड़े फिल्में जैसे सुहाना सफ़र, माई लव, अनहारी वगैरह वगैरह। तो हम सब मिलकर सुनेंगे नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है वो काम, मुझको पता है उस जालिम का नाम।

किसका गुस्सा है भला, जिस पे आए प्यार किसका गुस्सा है भला, जिस पे आए प्यार ऐसा दुश्मन हाय।

ये आपको भी पता है उस आलिम का नाम, मैं सोचा जरूर पता होगा। दोस्तों मस्त बहारों का मैं आशिक फिल्म फर्ज, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे। उन दिनों में ये फिल्म कितना हलचल मचाया और जितेंद्रा फिल्म में काम किया बबीता के साथ। दोस्तों बीते हुए दिनों में एक बात थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म एक्टर जब शुरुआत करते थे तो फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर का फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, उसके बाद टॉप एक्टर बन जाते थे। उसी तरह से एक एक्टर भी जितेंद्रा है या था जो जिनका एक दो फिल्म फ्लॉप हुआ फिर जाकर एक टॉप एक्टर बना। तो माइटी मुकेश नहीं है, मैंने सोचा माइटी मुकेश नहीं, राफी साहेब वंस अगेन, मस्त बहारों का मैं आशिक, जितेंद्रा एंड बबीता का फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। बहारों ने किए सजदे, बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया है। माइटी मुकेश की आवाज़ में आप गीत सुनेंगे। बॉम्बे बाय नाइट फिल्म का नाम है।

ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, बदले दुनिया सारी, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। दोस्तों फिल्म गाइड, इस फिल्म में देवानंद एक गाइड था, हिट्स था, रेस हिट्स, और एक सॉन्ग है जिसने शैलेंद्रा ने लिखा है। शैलेंद्रा का असली नाम है शंकर दास केसरी लाल होना चाहिए, शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्रा का असली नाम है। आप जानते हैं दोस्तों, एक गाना जब एक गीत जब बनता है तो लोग गाते हैं, हम हमेशा कहते हैं राफी ने अच्छा गाया, मुकेश अच्छा गाया, लता ने अच्छा गाया, किशोर कुमार ने गीत अच्छा से गाया, लिखी वो शख्स जो एक गीत लिखता है उसका नाम हम नहीं लेते हैं। वो आदमी जो बैठ कर सोच सोच के दिन रात एक गीत लिखते उन्हें हम भूल जाते हैं, ऐसा मत होना चाहिए। शैलेंद्रा का लिखा हुआ गीत है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, किशोरदा एंड लता।

मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत से एक्टर्स का फिल्म फ्लॉप हुआ है और सलमान खान का भी 2-3 फिल्म लगातार फ्लॉप हुआ। तो एक रात्रि में लगभग आधे रात को सलमान खान गोविंदा को तार किया। उन दिन गोविंदा उनका दोस्त है, तो उसे कहा कि मैं अब स्टॉप करूंगा, फिल्म फ्लॉप हो जाता अच्छा नहीं लगता है। तो गोविंदा सलमान खान का हाथ पकड़ा, उन्हें मदद किया दोस्तों। तो सलमान खान आज इतना बड़का एक्टर है। सलमान खान का एक फिल्म है लकी, और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है सोनू अतनांसानी, दोनों के आवाज़ में सुन जरा।

सुन जरा सोनिए सुन जरा इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, लॉकी नो टाइम फॉर लव फिल्म का नाम, अनुराधा एंड उदित नारायण।

वाकया लव सॉन्ग जा मेरी जा रही है सनम, एक दूसरा लव सॉन्ग है दोस्तों शाहरुख खान एंड यूही चावला ने काम किया फिल्म यस बॉस, 90s रोमांटिक सॉन्ग है और ये गीत मैं कोई ऐसा गीत गाओ आप सभी के लिए है।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

India के buitenlandse यानी कि मिनिस्टर के बारे में हमारे जनता। अब देखो भैया हम चली हैं और आगे फिर वैरक भैया जैसे फोलन दाम में एक दाई दगल रहा बहुत बड़का स्काद हुआ भैया। ऐसे शीना में एगो फिर वैरक का फब्रिक है जहाँ पे फिर वैरक बने हैं वहाँ पे बहुत बड़का एक्सप्लोसिव भैल है और इस फिर वैरक फब्रिक के नाम बा शांगशा प्रोफेंस हुनान में है भैया हुनान। तो एक स्वार एक्सप्लोसिव है लेगा फिर वेरेक फैब्रिक जो नहींगा स्टार्ट लियांग में शिनेई से प्रोफेंसी हुनांग में सोमवार के 26 लोग मर गए हैं। इन सस्तक लोग वहाँ चटाई गए हैं और बहुत जहबर जस क्रख फन एक्सप्लोसिव फॉर नील द खबावन एंड फॉर और साक्त मिस्टर हुक रूक वॉल्कन डी बोफन एंड खबित ऐस्टीगन एक प्रेसिडेंट जो नहींगा यिंगपिंग हेफ ऑपदाग गेवन तो ग्रोंदग एस नल अंडरसुक एकर बारे में बोले चलो तुलो अंडरसुक करो जल्दी से कि कैसे चीज़ हुआ हो सके है फन वीखर खफार फन ब्रांड बार स्वार बिस्क्रेट फॉर वादन इन ट्वी ऑप्शला ख्रेम तर वेर दे है ओमलेखन द खबीदन खा एक फाक वेर में से। तो चीना में इतना बड़का एक्सप्लोसिव भैल है यहाँ नीदरलैंड में भी भैला तुलो जानो फूलन दाम में भैया फूलन दाम में भी यही चीज भैल रहा। तो हमारे जनता और आगे हम जाइए मनोरथ का बोले भैया मनोरथ हम लोग के श्रीनाम में मिनिस्टर हैगा फॉर यूसियन पॉलिसी मनोरथ एरकेन नीफन वेरक पॉलिसी मार वार्सक्यूड फॉर मिस प्रोजेक्टेंस दिनस्टेड। हाँ बोले है बोले नीफन बरूपन मोहन ऐत उफनन बनात रक्त आमतनार बोले हमार दी इन प्राक्त अन खदूख बलैत वर्थ खफूर्त सो दैट मेंशन इन लीफर्स हाउदन क्यूनर फोर्स इन बोलो के माख के दूसर काम करे के जो ने वो अपन जिंदगी और मुंह से चलाई सके है वेस एरोप दैट यालस दो 300 अनमी है पर्सोन दी दीन्स फरलातन उम एल्डर्स फाक इन बैतलान तक खान वेरकन फॉर बलूनिंग अनसिंगलक होकर ले बोले 300 आदमी होकर चल गए पर्सनल बैतलान में काम करे के तो ऐसे मांगे अपन आदमियन के पकड़े ऑपलाइन सेंटर में 205 गो अन रिक्रूटर फॉरदर करी से और बोले यहाँ पर 5000 गो पॉलिसी और हेंदन मुतल लेखन om optimaal te kunnen opereren. Momenteel telt de korpspolitie 2700 bemanningsleden. Als je een poetje hebt, willen slechts ongeveer 10 zo'n nieuwe krachten worden aangetrokken, terwijl maandelijk 20 tot 30 personeelsleden het korps verlaten. Te op zoek naar de betere werkzaamheden en beloning vaak buiten de langs. Grenzen ze hebben jaar kam kreeg. Maar ik heb aan hem zover poetjes. Hij heeft aan wat aan hem kijk je hè. Jane Shaya McShon ke, die hij eerder als een van zijn vier adviseurs had betiteld. Beveiliging van politieambtenaren genoot of zal genieten? Antwoord Manore, daar is niets van waar. Hij voegt eraan toe dat ambtenaren in de praktijk wel ruimte zoeken voor extra inkomsten, wat mensen hun vrije tijd doen. Daar kan ik niets over zeggen, aldus de minister. De mensen werken in ploegendienst om hun levensonderhoud te voorzien, maar vele meerdere banen, sommige verrichten in hun vrije tijd. Beveiligingswerk bijvoorbeeld bij gouddrijven, anderen gaan naar het binnenland om extra te verdienen. Te oesap mag hebben, ja. De kali corruptie ketje na hoe toe. Ik heb hij. Want corruptie is subsie. बड़का बड़का प्रॉब्लम है दिसवा में हमारी जनता। आप लोग तो इकर बारे में पता है। अब देखो भैया नीदरलैंड खादरी सिक ऑफारन द क्रूज के ऑफांगन एट नीदरलैंडर और नीदरलैंड पठाई से और जाएगा जो अब क्रूसवाक मारे बोली बाटी होंडियस में जो बसमेंट भैल है नीदरलैंड 3 गो आदमी के जाए लावे फन द क्रूस के दैट फॉर द क्रूस फन द काप फिर दी लिफ्ट ऑफ फंगन फॉलोज मिनिस्टर बैतलांस साकेन ओम ए नीदरलैंडर एंड वीरल गेसोंथेड ऑर्गेनाइजेशन स्प्रीक फन 2 एरेस्टेटिक पेशेंटन एन टीम फन द Een team is op het schip dinsdagmiddag aan het inspecteren. Het is de bedoeling dat ze de medische toestand van opvarenden gaan bekijken. Door Nederland, de cruiseschip
van de Nederlandse Oceaanwide Expedition heeft geen toestemming om aan

और दोस्तों एक दो समाचार आपको हम और सुनाएंगे, उसके बाद हमारा समाचार खत्म आने को होगा। तो हम चलते भैया, एक आदमी अपन ओतो चलावत एगो ट्रेन वाहन दिखिला फौतू पे चलावत गए है, मकानी कैसे अपन ओतो लेके तुतनी का बोले है तुतली फौ कनाल में गोतरों में घुस गए भाई ओतो लेके। 50 वर्ष एक आदमी भैया शनिवार के उ गए ओतो लेके गोतरों में घुस गए भैया, बस एक ग्रुप आदमी आए लोग हेल्प करे, और हेल्प का भैया हेल्प का 31,000 SR दे ऑटोमोबाइल स्वच्छ चुरा ले से, और ओकर मोबाइल टेलीफोन ओके बरूफ करी से सब मैया। तो के कई नहीं कर बारे बोले जे तो के आ रेडिंग भल तो संबंध बोले हम तो के आले हेल्प करे मऊ हेल्प ना भाए उ तो के रूफ करे आवे है। तो यहाँ बताई गई है दोस्तों ऑटोमोबाइल इस बलांत में फूटते हैं इन कनाल एनवर्ड बरूफ दौर द हेल्पर्स। और दोस्तों ओकर बांध में देखो तीन को मेंदर यार के लंदन के छोटा छोटा लंदन 15-13-14 बरिस के सिपाही पकड़ के गए ले गए सब के सब बरूफ कर ले रहा आदमी लोग का रूफ कर ले रहा मोबाइल टेलीफोन तेखन ओफर एगो होटल है का परफॉर्म अनिमा जका नाम बार्सिलोना ना द बरूफिंग स्लूखन द फरदाख्तन ऑफ द फ्लक इन द रिक्ते लेली दौरब गए है। और वहां सिपाही 2 तारीख मई के उ सब के पकड़ ले से खुरपुआ के जेमा 8 लंदन रहा dit maal was de slachtoffer beroofd van een geldbedrag en vervolgens met handel. 2 van de verdachten waren daarbij gewapend met messen. De incident vond plaats ter hoogte van Gunpatweg mee. Toen je baant hij janta. Toen je hebt een orde kai, bhaiya, bataye gaye hai. Politie jacht op 2 vervluchtigen na aanval met een messen bij Shell Vredenburg mee. वहाँ पर 2 मिला के दौरा एक पकड़ी से को 14-15 बरिस के तेन ट्वेड 2 अंदर फरदाख्तन विस्त तो अनकोमन। तो बताई गई हैगा इस 20 तारीख अप्रैल के 34 यार हेबन बरूफ एन मिसांदल। और हमारे मनोरथ बोले क्रिमिनाली तैतवा कमती हो गए हम जाए तेरे लास्ट न्यूज भैया यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो नहींगा सेलेंस्की बाहरेन ड्रोन डील आन खबोदन सेलेंस्की मेल ऑफ दट है द गोल्फ स्टेट बसुक एन दार अन प्रोडक्टिव गस्प्रेक हीव गहाद मेर कोनिंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा। तब बोले ओके ओ देगा भैया अन ड्रोन आन ड्रोन सेलेंस्की रहे जिससे से बकेन फॉर ओ लोग इन मिडल ईस्टर फाकर ऑफ द रीक्यू गोल्फ स्टेट क्रीक एंड दार तमाकन में ग्रोस कालक से ईरान से ड्रोन अनफालन। बोले ईरान उस सब के बोले बहुत करे है तो यूक्रेन बोले है छत लोग के हम देबे हीव दो द ओरलक में रूसलैंड फील एरफारिंग में द स्काकलिंग फान देर क्लेक ऑन बमांड टू स्टेलन द प्रेसिडेंट स्क्रीव द सेलन बराइट इज द फैलेगेज एरफारिंग टू डीलन में बहरान ओम लीफ से बस्कैरमन एक है फोरस्टेल ओम एन ड्रोन डील द टीकरन द ड्रोन डी से भैया। तो यहां तक था हमारा आज की समाचार। हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरे राम। जोनी नंबर 1 है हमारा नाम।

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 93.5 MHz पर और नहीं कनाल 8 पर और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वास वाला मोह ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपके चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णा मूर्ति कविता कृष्णा मूर्ति शान का गाया हुआ गीत है। छाया है और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुरानी गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों। कि कहते हैं उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है। कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम। कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों। कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों। उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ
0: पे। एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस पक्का।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिन नौ यानी कि जुबेन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और कास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और कास कैसे होंगे, यादों में आपके शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह

कि उसका स्नेल हेथ दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

और संजना आई लव यू, संजना आई लव यू हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनात का और काश चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, निहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों। और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए कि कहते हैं उम्र के रह उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूँ काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूँ मैं, कमबख्त पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल की ओर। शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या मनवा कहां कहां ना लागे दोस्तों। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका दोस्तों। और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 5 20 20 7। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूरो 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है दोस्तों। कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे जियग गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो दोस्तों, दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है, तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद कर थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो, रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग और

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकार फन नई खतक और बलमा नई खतरी नई खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो दिल लगी ना किया करो।

0: किया करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत के ओर। अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा कभी पहले।

और तेरा नाम में बसी ही खुदा। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे में, लोकल जोन की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोन क्या क्या है, आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

मेरे प्राणों में आखिरी प्राण बसा कर एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी ज्यू जरन का है, हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल, यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके, हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देनहाख का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोंग हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोंग है।

और दोस्तों ये था और ये अनिल भीम। हम एक सॉन्ग का और जाते हैं आंद्रे रॉय की ओर, इंद्रनील रॉय की ओर हम जाते हैं दोस्तों।

और तेरे दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

आज की रात क्या होगा, रात छोड़ो चलो हम लोग बम्बई का रानू देखा जाए।

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे तब

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरी सो सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सो का चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सुकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सुकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9753 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

में जलते रहे, क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है। और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते हैं।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माइज मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए मूवी का नाम है दोस्तों।

और अगर तेरी जलवा खुदाई न होती तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा न हो। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों।

मोहम्मद रफ़ी, परमा श्री मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश माइती मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माइती मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेफ तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो। मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है मूवी मूवी मूवी, राज कपूर प

करोड़ों कान चुराने वाला माइती मुकेश गीता दत्त लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद्मिनी के साथ हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हा सिन्हा का मूवी जिसमें माइती मुकेश भी अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मौफी के नाम है हरियाली और रास्ता सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी के नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथी बुकेर ए नाइटिगेल लता जी का ये सॉन्ग है।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जाजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन, और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

दर्दे करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार निघंत का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार निघंत का जोंग और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़ से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना, और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको सुनाएंगे, मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

और दिल भी हम आपको दिया है और आप भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस इस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांझ करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी के नाम है भरोसा, निकटी हो द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: tip.
1: Zo, die kan wel een cool best pro.
2: Yes, doos to. To ye kuche. Beach beach me kabhi kabhi. अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

0: इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौशाद के साथ में
1: ना दिल ना
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जैसे दूर कोई गाए धुनिए।

0: और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मने और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है
1: जी। ना रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से अभी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

मैं तो चला जिधर चले रास्ता, भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जगा है, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से में एक सपना सा जागा है। लहरा के आया है झोंका बहार का, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी वारिस से आप सुनेंगे।

हम्द मूवी वारिस से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे, दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इश्तफाक है।

दूरियां नजदीकियां बन गई जब इस दफा है आशा भोसले के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। जवान तुम हो जवान हम है ये प्यार तुमसे हो गया है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, ज़माने वाले हमें इतना गरीब समझते हैं, ज़माने वाले हमें इतना गरीब क्यों समझते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम दर्द की दौलत से मालामाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा। और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानि विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किए हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा, और ये गीत हमने पेश किए हैं विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफ़ी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं। ऐसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तकदीर से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कैसे कोई जाने भला, फ्रॉम द मूवी तकदीर से द टाइटल। अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। हेमंत कुमार जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी प्यासा से हम पेश करते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यासा से हमने पेश किए हैं हेमंत कुमार जी की आवाज़ में। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसी गगन के तले।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5।

अभी आप सुन रहे थे आ जाऊं कि तुझे मैं लेके चलूं, किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दूर गगन की छाँव में। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे किसका रास्ता देखे, ए दिल ए सौदाई, फ्रॉम द मूवी जोशीला से हमने पेश किए हैं, किशोरडा आपको सुनाने वाले थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अमर प्रेम है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

अभी आप सुन रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किशोर डा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं,

अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने।

तीर चल गए। अभी आप सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं। नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत से, किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन की किसी में नहीं नहीं, फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है। इसी फिल्म से हमने पेश की है, लता और मोहम्मद रफ़ी जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, जब मोहब्बत जवान होती है।

अभी आप सुन रहे थे जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी बेटे से।

दमायती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। आशा पारेख इस फिल्म में काम किए हैं, साथ में मनोज कुमार जी और सिमी प्राण के साथ में। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं भरी दुनिया में आखिर दिल। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे भरी दुनिया में आखिर डिव को समझाने कहाँ जाए, आपको सुनाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी जी। रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, ज़िंदगी को बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस ज़रूरी है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा से हम पेश करते हैं, दमायती मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

दिल ने पुकारा फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले थे दमायती मुकेश जी। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, फ्रॉम द मूवी मेरे हुजूर।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे मेरे हुजूर है फिल्म का नाम, गम उठाने के लिए मैं तुझिए जाऊंगा। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो मेरे सनम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। और ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बतलाना चाहती हूँ, और वो ये है, शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ ज़िंदगी, शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया है तूने वो भी कितनों को नसीब नहीं होता।